0: कभी कभी
1: Nilufer on East FM
2: शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब उसमें फिर

It's playing for you on East FM, Kenya's premier Asian mix. Good morning, aap hai Nilufar ke saath on Lazy Lamhe. Bahut achhe achhe classics main aapko sunaungi, ye mera aapse vaada hai hamesha ki tarah. A very good morning to you. I've got lovely messages from Simran, Tina. Good morning, aapko bhi all the way from Mombasa. Bobby Osman. I've got Kritika, who's tuned in all the way from India. My mom, my sister, my nephew are tuned in from Mumbai as well. I've got Varsha, jo filhal travel kar rahi hai on different parts of India, saying, Nilufar, I'm on the move, but I'm listening to you and enjoying some wonderful classics. Well, I appreciate your company. Keep it going. Coming up next is also a wonderful track in the vocals of Lata Mangeshkar. But usse pehle, ye jo gana humne abhi abhi suna, बहुत खूबसूरत ट्रैक फ्रॉम प्रेम पुजारी. 1970 में आई थी ये फिल्म एंड एसटी बर्मन, आरडी बर्मन के जो फादर है उनका म्यूजिक रहा ये, और बहुत ही आइकॉनिक डुएट बाय किशोरदा एंड लता मंगेशकर. इनफैक्ट ये जो पोएट नीरज करके हैं, उन्होंने एक्चुअली अडेप्ट किया फ्रॉम हिज ओन हिंदी पोएम कॉल्ड चांदनी में घोला जाए, ओके, और उसको फिर इस गाने में कन्वर्ट किया कि शोखियों में घोला जाए. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ट्रैक और बहुत अच्छे इसका एक अलग ही यू नो म्यूजिकल एक्स्ट्रावेगेंजा कह सकते हैं. देयर इज अ यूज ऑफ ज़ाइलोफोन, देयर इज ट्यूबुलर चाइम दैट फेड्स आउट ड्यूरिंग द एंड ऑफ द सॉन्ग. तो क्या होता है आजकल तो पूरा सारा कंप्यूटराइज्ड है, यू नो एवरीथिंग इज वेरी टेक्निकली एडवांस. पहले पूरे म्यूजिशियंस बैठ के पूरा प्लान कर देते हैं कि किस वक्त कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज करना है ड्यूरिंग द सॉन्ग, ओके. और आरडी बर्मन आई थिंक फॉलोड हिज फादर्स फुटस्टेप्स. ऑफ कोर्स उनके पॉप नंबर्स और डिस्को गाने या डांस नंबर्स अलग ही होते थे, बट इफ यू लुक एट हिज ग्राफ ऑफ रोमांटिक सॉन्ग्स, ही फॉलोड द फुटस्टेप्स ऑफ हिज फादर, दैट इज एस टी बर्मन. चलो अगला गाना सुनते हैं, बहुत ही खूबसूरत है, ऑन लेज़ी लम्हे विद निलूफर ऑन ईस्ट एफएम.

29 minutes past 11, आप हैं निलुफर के साथ ऑन लेजी लम्हे ऑन ईस्ट एफएम केनियास प्रीमियर एशियन मिक्स. बड़ा मुझे सुनकर खुशी होती है बड़ी कि आप गाने इंजॉय कर रहे हैं. यस, टुडे मार्क्स 6 years since we lost Sushant Singh Rajput. You're right, Rasila. And if we've ever watched him on screen, we know that Sushant Singh Rajput never really went away. You know, there was something about in his eyes, in his smile, in the way he performed that felt deeply real. Today, on his death anniversary, millions and millions of fans still miss him, including me. Gone too soon. We miss you, Sushant Singh Rajput. I got Tina also who messaged me in the morning about that. And yes, he is definitely one of that big loss to the film industry. And how do I put it? You know, sometimes some people can just never be replaced, whether they have left your life or whether they have left this world. Anyways, right now it's time for Boojho To Jaane. Main aapko gaane ke kuch beech ke lyrics bataungi. Aapko mujhe batana hai ye kaun sa gaana hai, theek hai na? Okay, bahut hi famous track hai. Aur ye jo beech ka antra hai, actually second antra hai ki tune mere तन को छुआ मन में हुई हलचल दिल मेरा डोल गया ऐसे उड़ा तेरा आंचल. इजी है ना कि तूने मेरे तन को छुआ मन में हुई हलचल दिल मेरा डोल गया ऐसे उड़ा आंचल. इसमें एक क्लू देती हूँ, जो हीरो है वो है अनिल कपूर और जो हीरोइन है वो है माधुरी दीक्षित. ओके, सो यू टेल मी विच सॉन्ग इट इज. फॉर नाउ अलका याग्निक एंड उदित नारायण कमिंग अप नेक्स्ट विद अ वंडरफुल ट्रैक फ्रॉम मूवी दिल वाले, 1994 की सुपर डुपर हिट फिल्म फीचरिंग सुनील शेट्टी, अजय देवगन, रवीना टंडन और रीमा लागू, सईद जाफरी, गुलशन ग्रोवर, परेश रावल जैसे बहुत अच्छे अच्छे से कलाकार. एंड दिस फिल्म वाज वन ऑफ दोस एक्सलेंट फिल्म ऑफ 90s जिसका एक गाना सुपर डुपर हिट. इनफैक्ट सुनील शेट्टी रिसीव्ड अ नॉमिनेशन फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर फॉर दिस फिल्म. तो आप मुझे बताओ कौन सा गाना है.

कहाँ बनते हैं ऐसे गाने आप अगर 60s, late 60s, 70s, 80s, 90s, even early 2000s. आज भी कभी कभार अच्छे एकाध गाना आ जाता है, but if you listen to the songs today, there is nothing left to listen and enjoy. बस वही repeated, you know, music, repetitive lyrics. और अगर कुछ उनके समझ में नहीं आता तो पुराना गाना उठा के उसकी बैंड बजा के फिर से रिलीज कर देते हैं. लाइक एज मच एज आई लव वरुण धवन, व्हाट इज़ दिस चुनरी चुनरी नॉनसेंस, आई डोंट फील लाइक इवन लिसनिंग टू इट अगेन. आई लव माय ओरिजिनल सॉन्ग्स एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट लेजी लम्हे इज ऑल अबाउट. ओके, सो यू टेल मी विच सॉन्ग इट इज. आई एम गेटिंग इन क्वाइट अ फ्यू राइट आंसर्स ऑलरेडी के तूने मेरे तन को छुआ, मन में हुई हलचल, दिल मेरा डोल गया, ऐसे उड़ा तेरा आंचल. ओके, तो आप मुझे बताओ कौन सा गाना है. कॉल करो 0711 046 106 पे, या आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं ऑन 0701 106 106.

बिल्कुल, ये लम्हे ये पल हम याद करेंगे. पता है, वी डोंट नो वेयर लाइफ टेक्स अस, राइट. आज हैं कल नहीं, कल है तो परसों नहीं, कुछ पता नहीं है. बहुत सारे सही जवाब आए हैं. थैंक यू टू ईच वन ऑफ यू फॉर योर आंसर्स एंड योर वंडरफुल वंडरफुल कंपनी. और बहुत सारे मैसेजेस मैं अब तक शेयर नहीं कर पाई हूँ, बट आई होप आई कैन डू बिफोर आई एंड द शो. एक और बड़ा अच्छा सा रहीम ने भेजा है कि दुनिया को कल संभाल लेंगे, रविवार है, आज खुद को आराम देंगे. That is true, right? You know, कहते हैं माइंड एंड बॉडी को थोड़ा रेस्ट तो चाहिए. तो चलो, मैंने आपसे पूछा था कौन सा गाना है, एंड आई मैनेज टू गेट सो मैनी राइट आंसर्स. वेल डन टू ईच वन ऑफ यू. के तूने मेरे तन को छुआ, मन में हुई हलचल, दिल मेरा डोल गया, ऐसे उड़ा तेरा आंचल. एब्सोल्युटली करेक्ट. इट इज कोयल सी तेरी बोली, एंड दैट फीचर्स द ब्यूटिफुल माधुरी दीक्षित एंड द वेरी टैलेंटेड हैंडसम अनिल कपूर, जो आज भी ऐसे ही लगते हैं. मतलब क्या खा रहा है इंसान, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे. ही इज गोइंग बैकवर्ड्स एज वाइज. हैव यू सीन हिम रिसेंटली? माई गॉड, एंड ही इज बिकम वेरी एक्टिव ऑल्सो ऑन सोशल, सो इट्स गुड टू सी his updates. All right, so let's enjoy the song from movie Beta, coming up next. Lazy Lame pe aap Nilufar ke saath on East FM.

नियत शौक न भर जाए कहीं तू भी दिल से उतर न जाए कहीं। आज देखा है तुझको देर के बाद, आज का दिन गुजर न जाए कभी। ना मिला कर उदास लोगों से, हुस्न तेरा बिखर न जाए कहीं।

ईस्ट एफएम पर आप सुन रहे थे कविता सेठ को। कविता सेठ कवि नारायण अग्रवाल के गीत आपको सुना रही थी, कबीराना सूफियाना। ईस्ट एफएम पर आप सुन रहे हैं अंजुमन अलाउद्दीन कुरैशी के साथ। अब 2 बजे तक सुनिए जोशे मोहब्बत, नीना और राजेंद्र मेहता से सोहन सिंह जोश का कलाम, जोशे मोहब्बत।

हर आन दिल से उलझते हैं दो जहां के गम, हर आन दिल से उलझते हैं दो जहां के गम। गिरा है एक कबूतर कई अकाबों से, जरा सुनो तो सही कान धर के नालाए दिल, ये दास्तान मिलेगी तुम्हें किताबों में। नई बहार दिखाते हैं दागे दिल हर रोज, नई बहार दिखाते हैं दागे दिल हर रोज, यही तो वस्फ है इस बाग के गुलाबों का।

एक यही आस है काफी मेरे जीने में, दिल नहीं आप धड़कते हैं मेरे सीने में। अब इजाजत दीजिए, अलाउद्दीन कुरैशी की मुलाकात होगी अगले इतवार ईस्ट एफएम की अंजुमन में।

0: ईस्ट FM केन्यास प्रीमियर एशियन मिक्स।
1: अरे अरे अरे, आ फक्त शो नथी, आ तो गुजरात नो अंदाज छे। ए हालो, कमल कंटारिया नी साथे ईस्ट FM पर।
2: This is ईस्ट FM केन्यास प्रीमियर एशियन मिक्स।

0: This is East FM, Kenya's premier Asian mix.
1: अरे अरे अरे हजू बाकी छे आखी एक कलाक 60 मिनिट अरे भाई 3600 सेकंड गुजराती जलसो गुजरात नो रंग ए हालो कमल कंटारियानी साथे ईस्ट एफएम पर